एक दरसोहर जिहड़े कांखी लैके सतगुरां कोल आपां आउने आ, फिर उन्हां दी सतगुरु पूरी करदे आ, पर जो वह शर्तां लाउंदे ने वह सानूं मन्नणियां पैणियां। गुरबाणी सारी कंडीशनल है, कंडीशनल जो कह रहे ने मनना पैना। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कहे सेवक जन मन। तुसीं सतगुरु नूं पुछिए जी साडी कांखी पूरी हो सकदी है, कांखियां दी इच्छा वाहगुरु नूं मिलन दी, उहदे दर्शन करन दी। अज भी सतगुरां दा हुक्मनामा उच कराया, दर्शन कराए, हरेक शब्द कराए, कोई भी ऐसा शब्द नहीं जिहदे विच दर्शन नहीं कराए, मिलाप नहीं कराया। तां दशमेश पिता जी ने कहा सी ना, जो प्रभ को मिलबो चाहे, जो प्रभ को मिलबो चाहे, की करे खोज शब्द महल। एक शब्द खोज के कमा लो, कमाई करनी पैनी, उस शब्द की कमाई करनी पैनी, कला पढ़न दे नाल नहीं, पढ़िया मैल ना उतरे। जो उहदे विच लिखिया होया वा शब्द दे विच, वह करना पैना। आपां इह शब्द तुहानूं सारिआं नूं जबानी याद होना, धन धन गुरु रामदास जी दा तनासरी राग च, इच्छा पूर्क सर्व सुखदाता हर। आपां अरदास कीती है सुखने साहब पढ़िया है कि सतगुरु साडे अंदर कांखी आ, कांखियां दी इच्छा। कांखी एक है दरस तुहारो, ये सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चिता। सानू उन्हां नूं मिला जेड़े तेरा दर्शन करना चाहुंदे ने। कांखी एक है दरस तुहारो, नानक उन संग। सानू भी सतगुरु उन्हां नूं मिला ते अहीं कर लिए दर्शन। कांखी हुंदा दर्शन दी प्यास, जिन्हां नूं प्यास लग जांदी है वह पूरी करदे ने सतगुरु। दर्शन प्यासी दिन सरात चित मूं अंदर ने, आ जिहड़े फिर मन नूं जोड़ के अरदासां बेनतियां करदे दिन रात, ते फिर वह आप मिलदा। खोल कपट गुरमेलिए, नानक हर संग मीत, हरी दे नाल मिलाप करा दिंदे। सुन यार हमारे सजण इक करूं बेनती है, तिस मोहन लाल प्यारे हों फिर खोजंत। आपां खोजी नहीं ना बनदे, आपां उन्हें मत्था टेकिया, प्रसाद लिया, लंगर छकिया, तो चलो जी घरां। गुरबाणी गुरु जो कह रहे ने वह करना पैना, वह भी संगत च बैठ के। भाई प्राप्त मानुख दे हुरी आ गोबिंद मिलन की, ते करिए की, इको ही काम है। अवर काज कोई नहीं करना, अवर काज तेरे, ये नहीं दुनियावी काम छड़ के बह जाना, वो तो करने पैने तुहानूं। अवर काज हुंदे वाहिगुरू नूं मिल ली, जिहड़े कर्म कांड लोग करदे सीगे, पाठ पढ़े और वेद बचारे, निवल भयंगम साधे, वह नहीं करने। जिथों इथों शुरू किया गुरु नानक साहब ने, सोचे सोच ना हो वे जे सोची लख, चुप है वर्त मोनी हो जाते, चुप है चुप ना हो, मन तो चुप नहीं करता जिन्हों करवाना है। जे लाए रहा लवतारे भी अखा बंद करके बैठे रहते, फिर वर्त रखते हैं भी शायद काम करो दो मोह घर वीक हो जाएंगे। भुखे हाँ, मन की भुख नहीं उतरती, भुख ना उतरी भुखे रहन लाल, जे बन्ना पुरियां पार, भावें सारी पुरियां की जायदाद ये अलग सुट दो अगे लिया के रजदा नहीं, जिन्ना चर नाम दे तक नहीं पहुंचता। सहस खटे लख को उठतावे, तृप्त ना आवे माया पाछे पाए। तृष्णा अगन है ना, अगन ज्यो पावक इंधन नहीं तरापे, ये साडा जिहड़ी अगन है माया, इहदी तृष्णा जिहड़ी है उहनूं माया अगन कहा है ना, ते ओ कल्ली मिटदी है। तृष्णा बूझे हर के नाम,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਬੋਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਸਮਾਉਂਦੇ ਉੱਚੋਂ ਹਰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ, ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਨੀਰ ਨਰਾਇਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਅਗਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਚੰਦਨ ਚੰਦਨ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟਹੀ ਕਾਮ, ਸੀਤਲ ਥੀਵੇਂ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦਰੋ ਹਰ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਜਪ ਕਰਨ, ਆਓ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ। ਵਾਹਿ

गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म बिचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवत्या दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि।

अड़ेल सुने गोंग जो जाहि सुरसना पावई सुने मूड चितलाए चतुरताया वई दुख दर्द पाओ निकट ना तिन नर के रहे हो जो जाकी एक बार चाओ पई को कहे चाओ पई संबद सतरह सहस पनिजय अर्द सस फुन तीन कहिजय पाद्रव सुधी अष्टमी रववारा तीर स्तद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्रोपख्याने तिरे चरित्रे मंत्री भूप संवादे चार सौ पांच चरित्र समाप्त मस्त सुभ मस्त अफजू दोहरा।

संग हरु प्रथम तरह भगवत को ध्याना बहुर करो कविता विदनाना कृष्ण जथा मात चरित्री उचारो चूक हो कबले हो सुधारो का बाज दोहरा जो निज प्रभ मो सो कहा सो कहो जग माहे जो तेह प्रभ को त्याय है अंत सुर्ग को जाहे दोहरा

महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते रव सास क्रोर जलेस दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई पाख तनेत सुरग बास रग बिर करा सगरी पुरी समेत चौपाई।

प्रथम सुख दावण त्वै प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा पूल परी लहु लेहो सुधारा दोहरा नेत्र तुंके चरण तार सतद्रव तीरथ रंग श्री भगवत पूर्ण की ओर अकबर कथा प्रसंग दोहरा साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया।

सिमरत नाम सगल रोग खया। सारे दुखां दा दारू परमात्मा दा नाम है, ओदी बंदगी है, ओदी भगती है,

श्री वाहिगुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासी हुए सहाय अर्जन हर गोबिंद नव सिमरओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिह जिथे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरियाए कर नौन दे आवे ताए सब थाई होए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ओ आप जी दे हजूर उदास बेनती है जी आप जी ने कृपा रहमत कीती है अमृत वेले तो सोहने तख्तां ते प्रकाश मनु के दर्शन दीदार बख्शे हन आप जिया का कोटान कोट धनवाद शुकराना है इस वेले शाम दे दीवान दी संपूर्णता परंत आप जिया के पावन स्वरूप दे सुखासन की सेवा हुई है सोहिला साहब की बाणी पढ़ी गई है बाणी पढ़द्या सेवा करद्या भुल चुक की खिमा बख्शन आप जिया के भाणे में दिहाड़ा सुखा नाल बतीत होया है आई रहन आप दे भाणे में बतीत होवे कृपा करो आप जी अपनिया सेजा ते विराजमान होवो संगतां नूं खुशियां बख्शो अमृत वेले दे जागने दर्शन बख्श के निहाल करना नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोले सो निहाल

गुरु मनाया राज रसे खाहे पौड़ी तद जग में खेल रचाया विच होमे पाइया एक मंदिर पंच चोर है नित करे बुरियाइया दस नारी एक पुरख कर दसे साधल भाइया इन माया मोहनी मोहिया नित फिरे भर माइया हाठे दोवो हाठा दोवे की त्यो सिव सख्त वरताइया सिव अगे सख्ती हारिया एवे हर भाइया एक विचों ही तुद रखिया जो सतसंग मिलाइया जल विचों बिंब उठा लियो जल माहे समाइया डकने महला पांजवा अगाहां कूत राग पिछा फेर ना मोड़ा नानक से जवेहा वार बोड़ ना हो वी जनमड़ा महला पांजवा सजन मैडा चाइया हब कही दा मैत हबे जानने अपना कही न ठाहे चैत महला पांजवा गुजड़ा

दान तेरे घट चानना तन चंद दिपाया जिन किया तिन देखिया जग तंदड़े लाया दान तेरे घट चानना तन चंद दी पाया चंदो दी पाया दान हर कै दुख अंधे।

आप करे किस आखिए होर करे ना कोई। दान दे दाता जग विदाता नानका सच सोई। आप करे किस आखिए होर करे ना कोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग सूही संत महला पहला घर चौथा। जिन किया तिन देखिया, जग तंदड़े लाया। दान तेरे घट चानना, तन चंद दी पाया। तन तन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का पवित्र मुखवाक राग सुखी विच है जी। अंग 765 766 ते विराजमान है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जीओ गौड़ी सुखमनी महला पंजवां। श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आद गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः, सतगुरे नमः, श्री गुरुदेव नमः। अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल क्लेश तन माहे मिटावो। सिमरो जास पसंबर एकै नाम जपत आगंत नेकै। वेद प्राण सिमर सोधाखिर, किन्ने राम नाम एक आखिर, किनका एक जीव सा।

लोक अगम गात पार ब्रह्म सोए जो जो कैस मुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साज ना किया चर्ज कथा अष्टपदी साध के संग मुख उजल होत साध संग मल सगली खोत साध के संग मिटे अभिमान साध के संग परटे सो ज्ञान साध के संग बुझे प्रभ नेरा साध संग सबोधन मेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बढ़ने कौन प्राणी नानक साध की शोभा ब्रह्मा इसमानी साध के संग गोचर मिले साध के संग सदा पर फुले साध के संग आवे बचपंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हो सब की रेन साध के संग मनोहर बैन साध के संग न कतूनता वे साध संग अस्तित मन पावे साध के संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु के संग मां पनीत साध संग के सेवनी बैर साध के संग न बिगा पैर साध के संग नाई को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध के संग नाई हो ताप साध के संग तजे सव्या व्यापे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बनाई साध के संग न कबू तावे साध के संग सदा सुख भावे साध संग बस्त गोचर लहे साधु कै संग आजर सहे साध के संग बसे थान उचे साधु कै संग महल पूछे साध के संग दृढ़े सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान साध के संग सब कुल उधारे साध संग साज मीर कुटुंब निस्तारे साधु के संग सोतन पावे जिस तन ते सब को बरसावे साध संग धर्म राज करे सेवा साध के संग सोभा सुर देवा साधु के संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर उथान गम नान साध के संग सबल जन्म साध के संग नहीं किसकाल दर्शन पेट दोत न्याल साध के संग कलूक धरे साध के संग नरक पर हरे साध के संग यम सोहेला साध संग विशरत मेला जो ऐसे सोई फल पावे साध के संग न मृथा जावे पार ब्रह्म साध रिद वसे नान उदरे साध सुन से साध के संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुंगाओ साध के संग नमनते विसरे साध संग सर्प निस्तरे साध के संग लगे परम मीठा साधु के संकट का डीठा साध संग पे आज्ञाकारी साध संग गत पे हमारी साध के संग मिटे सब रोग नानक साध पेटे संजोग साध की महिमा वेद न जाने जेता सने जेता वख्या ने साध की उपमा तय गुण तय दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊचते ऊंची साध की शोभा मूचते मूची साध की शोभा साध बने आए नानक साध प्रभेद न भाई श्लोक मन साचा मुख साचा सोहे अवन पिके एक बिन कोय नानके लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल लेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्व को शोक ब्रह्म ज्ञानी कह दृश्य समान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी कहती जेक ज्यो बसदा कौ खोदे कौ चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यो पावक का सह सुहाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैन लागे जला ब्रह्म ज्ञानी कह मन हो प्रगा जैसे तर उपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सतर समान ब्रह्म ज्ञानी कह नाय मान ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे ऊंचा मन अपने है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नान जिन प्रव्याप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल गिरी ना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब उपर मैया ब्रह्म ज्ञानी ते किश बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा सुंदर सी ब्रह्म ज्ञानी की दृश्य अमृत वर्षी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास ब्रह्म ज्ञानी का नई विनाश ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी परपकार महा ब्रह्म ज्ञानी कह नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कह हो सो भला ब्रह्म ज्ञानी सुफल भला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कह कह रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसे प्रसंग ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अम्बुत त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद
ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नान ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता ब्रह्म ज्ञानी कह होए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्या ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माए ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाए आखिर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता ब्रह्म ज्ञानी सच जीवे नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब उपरहात ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक उरदारे जो अंतर नाम सर्व में पेखे भगवान निमख निमख ठाकर नमस्कारे नानक ओ आपर्ष सगल निस्तारे अष्टपदी मिथ्या न ही रसना परस मन में प्रीत नंजन दर्श पर त्रिया रूप न पेखे नेत्र साध की टहल संत संगेत कर्ण ना सुने काऊ की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुरु प्रसाद विख्या पर रे मन की वासना मनते टरे इंद्री जत पंच दोख ते रहत नानक कोट मदे को ऐसा परस वैष्णो सोजे सुपर सो प्रसन्न विष्णु की माया ते हुए पैन कर्म करत हो होवे न कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काउ फल की ईशा ने बासे केवल भगत कीर्तन संग्राजे मंत्र अंतर सिमरन गोपाल सभी ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़े अवरा नाम जपावे नानक हो वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्का संग मनते बिनसे सगला भरम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवे तिस भगवती की मत उत्तम होवे भगवंत की डायल करे नितनीत मंत्र अर्पे विष्ण प्रीत हर के चरण हृदय विसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रबोधे राम नाम आत्म में सोधे राम नाम सारस पीवे उस पंडित कहे उपदेश जा जीवे हर की गदा हृदय विसावे सो पंडित फिर जो नावे वेद प्राण स्मृत बूझे मूल सुख में जाने अस्थूल चौ वर्णा को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा देश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौ वर्णा में जपे को नाम जो जो जपे तिसकी गत होए सा संग पावे जन कोए कर कृपा अंतर उधारे पस प्रेत मुक्त पाथ रुख उतारे सर्व रोग का उखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम गाओ जुगत गते ना पाइये धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस नदरी आया दात संदन भाजन पाया सदा निक निक डर जान सो दास दर गए प्रवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सोजी परे सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे जीवन मुख सो कावे तैसा हरक तैसा सो सदा नंद नहीं मिजो तैसा स्वर्ण तैसी माटी तैसा अमृत तैसी बेखाटी तैसा मान तैसा अपमान तैसा रंग तैसा राजान जो बरताए साई जुगत नानको पर कही है जीवन मुक्त बार ब्रह्म के सगले ठाओ जिस जित कर रखे तैसा तन्नाओ आपे कर्ण करावन जो ब्रह पावे सोए फुन हो पसरियो आप होए अनंत रंग लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग जैसी मध्य तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अवनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पै निहाल श्लोक उस्तत करे अनेक जाने अंत न पारा वार नानक रचना प्रवरचि बहुदे अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट चार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन भरमे दासी कई कोट वेद के स्रोते
ਕਈ ਕੋਟ ਬੀਸਰੋ ਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਕਵ ਕਾ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ ਕੋਟ ਨਵਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਵੇ ਕਈ ਕੋਟ ਭੈ ਅਮਾਨੀ ਕਈ ਕੋਟ ਅੰਧ ਗਿਆਨੀ ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ ਕਈ ਕੋਟ ਭੈ ਆਤਮ ਨਿਕੋਰ ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਦਰਭ ਕੁਹਿਰੇ ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਦੂਖ ਨ ਕਰੇ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਸਰਮਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰਦੇਸ਼ ਪਰਮਾਏ ਜਿਸ ਜੇ ਲਾਓ ਤਿਤ ਲਗਨਾ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ ਕਈ ਕੋਟ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਖੀ ਸਰਪੋ ਪਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਥਰ ਬਿਰਖ ਨਿਪ ਜਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਵੇ ਸੰਤਰ ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ ਭੂ ਮੰਡਲ ਕਈ ਕੋਟ ਸਸਿਰ ਸੂਰ ਨਖੱਤਰ ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵ ਦਾਨ ਮਿੰਦਰ ਸਿਰ ਛਤਰ ਸਰਵ ਸਮਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਧਾਰੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਤਾਰੇ ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸ ਤਮ ਸਤ ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਅਰਸਾਸ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿੰਦ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਚਿਰ ਜੀਵੇ ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸਵਰਨ ਤੀਵੇ ਕਈ ਕੋਟ ਜਕ ਨਿਵਸਾਜ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾ ਸਭ ਤੇ ਨੇਰੇ ਸਭੂ ਤੇ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲਿਪਤ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰ ਕਈ ਕੋਟ ਪਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮੇ ਜੀਵੇ ਮਰੇ ਕਈ ਕੋਟ ਬੋ ਜੋਨੀ ਫਿਰੇ ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਦੀ ਕਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਕਾਲੇ ਤੱਕ ਪਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਤਨਵੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਏ ਮੈਂ ਚਿੰਤ ਜੈ ਜੈ ਭਾਣਾ ਦਾ ਤੈ ਰਾਖੇ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਹੱਥੇ ਕਈ ਕੋਟ ਭੈ ਵੈਰਾਗੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗਤੇ ਨਿਵਲਾਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਆਤਮ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬਮਲ ਹੰਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਪਿਆਸ ਤਿਨ ਘੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅਮਨਾਸ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਂਗੇ ਸਤਸੰਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਏ ਆਪ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰਖੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਕਾਸ ਮਿਰਮੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ਕਈ ਜੁਗਤ ਕੀਨੋ ਵਿਸਤਾਰ ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਸਾਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਕਾਰ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਨੇ ਵਹ ਭਾਤ ਪ੍ਰਭਤੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੇ ਕੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਮੁਕੇ ਦਾਸ ਤੈਨੂੰ ਉਪਦੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ ਸਦਾ ਨਿਹਾਰੇ ਕੋ ਨੇਤਰੇ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੇ ਅਮਰ ਭੇ ਸਦ ਸਦ ਜੀਵੇ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਆਤਮ ਰਸ ਸਹਿ ਸਮਾਵੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਸਾਹ ਸਾਹ ਸਮਾਰੇ ਨਾਨਕ ਕੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕਰਨ ਕਾਣ ਪ੍ਰਵੇ ਕਹਿ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਦਿਸ ਬਲਿਹਾਲ ਨੇ ਜਲ ਤਲਮਈਏ ਸੋਏ ਅਸ਼ਪਰੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਕਰਨੇ ਜੋਗ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਹੋ ਕਿਰਮੇ ਥਾਪੋ ਥਾਪਣਹਾਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਬਾਰਾ ਬਾਰਾ ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਧਰ ਰਹਾਵੇ ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੇ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੇ ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁਕਮੇ ਅਨਕਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਸਮੇ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਮਾਨੁਕ ਗਤ ਪਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਥਰ ਦਰਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਬਿਨ ਸਾਸ ਰਾਖੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤੇ ਤੇ ਉਧਾਰਾ ਆਪ ਕਰੇ ਆਪਣ ਵਿਚਾਰੇ ਦੋਹਾਂ ਸਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ ਖੇਲੇ ਵਿਕਸੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜੋ ਪਾਵੇ ਸੋਕਾਰ ਕਰਾਵੇ ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵ ਨਾ ਆਵੇ ਕਹੋ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਵੇ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਕਰਾਵੇ ਇਸ ਕਹਿ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਚਲੇ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਕਰੇ ਅਣ ਜਾਣ ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਚੇ ਜੇ ਜਾਣਦੇ ਆਪ ਨਾ ਬਚੇ ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਰਹਿ ਦੇ ਸਧਾਵੇ ਨਿਮਕਮਾਏ ਚਾਰ ਕੁੰਡ ਫੇਰਾਵੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮ ਲੇ ਖਿਨਮੇ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜਾ ਕਾ ਦਿਸ਼ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੇ ਤਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦੇ ਦਿਸ ਪ੍ਰਟਾਵੇ ਜਾਕੂ ਆਪਣੀ ਕਰੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜਗਦੀ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਦਿਸ ਕੀ ਰਾਸ ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਆਪਣੀ ਬਣ ਤੇ ਆਪ ਬਣਾਈ ਨਾਨਕ ਜੀਵੇ ਦੇ ਵਡਾਈ ਇਸ ਕਾ ਬਲ ਨਾਈ ਸਾਥ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਪਰਾ ਜੀਓ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਫੁੰਦੀਓ ਕਬੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਬਸੇ ਕਬੂ ਸੋਗ ਹਰ ਕਰੰਗ ਹੱਸੇ ਕਬੂ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ ਕਬੂ ਬਕਾਸ ਪਿਆਲ ਕਬੂ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾ ਬਣਹਾਰ ਕਬੂ ਨਿਰਤ ਕਰੇ ਵਪਾਤ ਕਬੂ ਸੋਏ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਬੂ ਅਪ ਕੀਰਤ ਕਹੂੰ ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ ਕਬੂ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋ ਦਰਵਾਲ ਕਬੂ ਹੋਏ ਬਹਿ ਵਡਰਾਜਾ ਕਬੂ ਭੇਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ ਕਬੂ ਅਪ ਕੀਰਤ ਮੈਂ ਆਵੇ ਕਬੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ ਤਵੀ ਰਹੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕਹੇ ਕਬੂ ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਕਰੇ ਵਖਿਆਨ ਕਬੂ ਮੋਹਨ ਤਾਰੀ ਲਾਵੇ ਧਿਆਨ ਕਬੂ ਤਰ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਬੂ ਸਿਰ ਸਾਧੂ ਮੋਹ ਗਿਆਨ
ਕਵੋ ਕੀ ਰਹੱਸ ਪਤੰਗੇ ਜੀਆਨ ਜੋਨ ਪਰਮੇ ਪਰਮੀਆ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜੋ ਸਵਾਗੀ ਦਿਖਾਵੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵੇ ਤਿਵੇ ਨਚਾਵੇ ਜੋ ਤੁਸ ਪਾਵੇ ਸੋਈ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਨਾ ਕੋਏ।

Deus de nam naimura ure koho kinesh karam aap bala kar tu da ni ki ape jane apne ji ki aap sajdari sab saaj ut bod apne sangraj da ki gat mit kahi na jaye dusan hoye te soji paaye tiska kiya sab parwan gur prasad nanke jaan जो जाने सदा सुख होया मिलाए लय प्रस होए ओ तनवंत कुलवंत बदवंत जीवन मुक्ति सिरदय भगवंत धन धन धन जन आया जे प्रसाद सजगत राया जनान का हे स्वाव जन के संग सिदावनावा मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार श्लोक पूरा प्रभ हराध्य पूरा जगा नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुणगा अष्टपदी पूरे गुर का सुनो देश पार ब्रह्म निकर पे एक साथ साथ सिमरो को बिंद मन अंतर की उतरे चंद आस नित त्यागो तरंग संजना की धूर मन मंग आप जोड़ बेनती करो साह संग अग्न सागर तरो हार धन के परले भंडार नान गुरपुरे नमस्कार खेम कुशल सहज नंद साह संग परमानंद नरक निवार उद्वारो जियो गुण गोविंद रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग नेक पाल दमोदर दीन दयाल दुख भजन पूर्ण कृपाल सिम सिम नाम बारंबार नानक जी का ए आधार उत्तम श्लोक साध के वचनम ली ला रे रतन सुन कुमाव दो उधार आप तेरे लोका निस्तार सबल जीवन सबल दागा संग जाके मन लगा रंग जय जय शब्द नाद बाजे सुन सुन नंद करे प्रभु का जय प्रंडे गोपाल मात के माते नान गुजरे दिन के साथे सन जोग सुन सनी आए करके कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए बैर पे सबरे अमृत नाम सा संग लैन सो प्रसन्न पे गुरुदेव पूर्ण हुए सेव की सेव आल जंजाल विकार दे रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दे प्रधारी नानक निवी के बमारी प्रभु की उस्तत करो संत मीत साव तानिका खर्ची सुखमी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सो तन धान सब निशाता की पूर्ण होए प्रधान पुर पर सब लोहे सब ते उच पाए स्थान बो न होवे आवन जान अर्तन काट चले जन सोए नानक जी से प्राप्त होए खेम सांद रिद्ध नौनंद बुद्ध ज्ञान सरत सिद्ध विद्या तप योग प्रभ ज्ञान ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रकाश सब के मत सकल देवदास सुंदर चतर तत्का वेता समदर्शी एक दिश चेता ए पल दिशन के मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने निधान जपे मन को ए सब जुमे ताकीगत होए गुण गोविंद राम तुन बाणी सिमर सास त्रिभेद बगाणी सगल मदान के बार नाम गोविंद भक्त के मन विश्राम कोट बराज सास संग मिटे संत कृपा दे जमते छुटे जाके मस्तक कर्म पर पाए सास रण नाम ते आए मृत को जीव आलन हार भूखे को देवता आधार सरमण दान जाकी दृष्टि माए जिस मन बसे सुने लय प्रीत तिस जन आवे अप्रचीत जन्म मरण दागा दुख निवार दुलभ दे तत्काल उधार निर्मल शोभा अमृता की बाणी एक नाम मनमाय समाणी दुख रोग विनसे पै भरम साध नाम निर्मल

नहीं सुमारे तौल धर्म दया का पुत संतोष था रखिया जनसूत जेको बुझा हुआ सचियार तौले ऊपर के तपार धरती होर परा होर तिस पार तला कमण जोर जी जात रंगा के नाम सबना लिखा बड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखा किता होए किता तान सवाल रू के तिदा जाने कौन कूत किता बसावे को कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कह विचार वारिया न जावा एक वार जो तुत पावे साई परिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख रनमुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सुरम पाख सार असंख मोल विलाय तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुत पावे साई परिकार तू सदा सलामत निरंकार असंग मूर्ख अंधकोर असंग चोर हराम खोर असंग कमर कर जाहे जोर असंग गलवड़ त्याग कमाहे असंग पापी पाप कर जाहे असंग कुड़ियार कुड़े फिराहे असंग कमलेश माल पाख खाहे असंग निंदेश कराहे पार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुत पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाम असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख है सिर पार होए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुणगा

परिये हथ पैर तंदे पानी तो दैव तरस खे मूत बलिति कपड़ोए देसा बूण लइए ओ हो तोए परिये मत पापा कै संग ओ हो तो पहना मैं कह रहा।

साय आकाश उड़के उड़क पालत के वेद कैनिक वात सहस टारा कैनिक ते बास लुक तात लेखा हो त लिखिए लेखा होए विनाश नानक वड्डा आखिए आप जाने आप सालाहे तिसुरत ना पाइया नदियां ते वा पवे सुमंद न जानिए सुमन सा सुल्तान गिरह से तिमाल तन कीड़ी तल न हो जे तिस मन हो न विसरह अंत न सिवते कह न अंत अंत न करण दे अंत अंत न वेखण सुनण न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै किता कारु अंत न जापै परावार।

एवड़ी उच्चा होवा कोए तो सुच को जान सोए देवड़ाव जाने आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखा न जाए वड्डा दाता तिल न तुमाए कित्या मंगया जो दे अपार कित्या गणत नहीं विचार कित्या

अमल गुण अमल व्यापार अमल व्यापारी अमल पंडार अमल आभ अमल जाहे अमल पाए अमल समाहे अमल तरम अमल दीवान अमल तल अमल परवान अमल बक्षिस अमल निशान अमल कर्म अमल फरमान अमल अमल आख्या न जाय आखा ग्रह लिवलाय आख्या वेद पाठ पुराण आख्या पढ़ करे बख्याण आख्या ब्रह्म आख्या इंद आख्या गोपी तय गोविंद आख है ईश्वर आख है सिद्ध आख कीते कीते बुद्ध आख दानव आख देव आख सुर नर मुंजन सेव कीते आख है आखण पाहे कीते कह कह उठ उठ जाहे इत कीते होर करे चाहे आखन सके के देवड़ पावे तेवड़ होए नानी जाने साचा सोए जेको आख बोल बिगाड़ ता लिखी है सिर गावारा गावार सो दर के हा सो कर के हजत वै सर्व संभाले वाजे नादा ने कसंका किते वावण हारे किते राग परि सो कही न किते गावण हारे गाव है तो अनुपौन पाणी वै संतर गावे राजा धर्म दुआरे गाव है चित गुजरे जान है लिख लिख धर्म विचारे गाव है ईश्वर ब्रह्मा देवे सोहन सदा सुवारे गाव है इंदन दस बैठे देवत्या अंदर नाले गाव है सत समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सति संतोखी गाव है वीर करारे गावन पंडित पढ़ा रखे सो जग जग वेदा नाले गाव है मोड़िया मनमोहन सुरगा मच पयाले गावन रतन उपाय तेरे अड़सर तीर्थ नाले गाव है जोत महाबल सूरा गाव है खाणी चारे गाव है खंड मंडल व पंडा कर कर रखे तारे सही तुझनु गाव है जोत पावन रते तेरे भगत रसाले होर किते गावन से मैं चितन आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई है पी हो सी जाए नंदासी रचना जिन रचाई रंगे रंगे भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेख्या कीता अपना जगत दी वड्याई जो तिस भावै सोई कर सी हुक्म न करना जाई सो पात साहब साह पत साहेब नानक रह रजाई मुंदा संतोख शरण पचोली ध्यान की करै प्रभूत खिंथा काल कुआरी काया जुग डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीत आदित से आदेश आद नील नादन आह जुग जुगे कोवेश भगत ज्ञान दया पंडा।

माल मनसोर जोर न सुरते ज्ञान विचार जोर न जुगते छुटा संसार जैसा जोर कर वेखा सोए नानक उत्तम नीच न कोए राति रुति तिवार पुण पणि अग्नि पाताल तिस्वे

भावनाशम उन्मन प्रकाशम गुणगण प्रणाम जल थल मदाम अंश अंग आसनु भंग उपमा पार गतमित धार जल थल मंड दिस विस भंड जल थल महंत दिस विस बेंत अनुभव नास दे धर त्रास जान बाहो

त्रितके तरण है, जग के कर्ण है, मन मानिए है, जग जानिय है, सर्व पर है, सर्व कर है, सर्व सर्ववासी है, सर्वनाशी है, कर्ण ना कर है, विश्वम्बर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंड से है, कल खंड से है, परते पर है, कर्ण ना कर है, जपा जपे अथपा अथपे अकृत कृत है, अमृत अमृत है, अमृत अमृत है, कर्ण कृत है, आकृत कृत है।

निर्भनायक है, सर्वभायक है, बपंजन है, अरगंजन है, रिपतापन है, जब जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता करें, अर्ता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म भस है, जस के जस है, भुजंग प्रजा छंद। नमो सूर सूर्य, नमो चंद चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो रासंतान संसांत रूपे, नमो परम ततंग अतंग अततन स्वरूपे, नमो जो जोगे, नमो ज्ञान ज्ञान, नमो मंत्र मंत्र, नमो ध्यान ध्यान, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञान, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कला करता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे नाद विभूते, कलंकार रूपे, अलंकार लंके, नमो आसासे, नमो बाम अंके, भंगी स्वरूपे, नंगी रामे, त्रिभंगी त्रिकाले, नंगी कामे, कश्री छंद, अजय लय भय भय मू जू अनास कास गंज भंज अलख भख काल दयाल अलेख भेख अनाम काम गाहडा नाते प्रमाते जोनी मोनी ना रागे ना रंगे ना रूप न रेखे कर्म भरम गंजे लेखे भजंग भजा छंद नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे गंजल नामे समस्तल निवासे काम विभूते समस्तल स्वरूपे कर्म प्रणासे धर्म विभूते सदा सचदानंद सदन प्रणासी क्रीम रुकनिंदा समस्तल निवासी जय विभूते जय विकनी में हरियं करियं क्रीम रही में।

पारी घुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर हरिन मरोर वसन महादेव दंगन मान मलेंगे श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जान निदान चलेंगे वीर पार बडे बरियार विचार सार की दार पशैया तोरत देश मलिंद वसन माते जान के मान मलैया गाड़े ग्राण के तोरन हार

प्रयास करेंगे। कोट स्नान गजात गदान एक सो अम्बर साज भरेंगे। ब्रह्म है सर्विशन सची पद अंत फसे जम फास भरेंगे। जे नर श्री पद के परस भक्त नर फेर न दे तरेंगे। कहां पे हो जो तो लोचन मूंद के बैठ रहे हो। भक्त हन लगायो नाथ प्रियो लिये सात समुद्रन लोग गयो पर लोग गुआयो। वास कियो विखियान सो बैठ के ऐसे ऐसो बैस बतायो। साच कहो सुन लियो सवै जन प्रेम कियो तन ही प्रभ पायो। काउ लान पूछते रहो सिर काउ नलिंगरे लटकायो। काउ लख्यार वाची दिशावे काउ पछाको शीश निभायो। को भूतान को पूजते हैं पस को मृतान को पूजन तायो। कूर क्रिया और जो सभी जग श्री भगवान को भेद ना पायो।

प्रीतम करो। सिख वार सिख संग करो, दुष्ट हृदय उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता, जे अत दसनी परे तिनके, दुष्ट दुख वह मरे, पुरख जीवन पप परे तिहारे, तिनके तुम संगत सब टारे, जो कल को एक बार तिहाई है, ताके काल निकने हैं, अरछा होए ता सब काला, दुष्ट रिष्टने तत्काला, कृपा दिशन जाय न हरियो, ताके ताव तनक मो हरियो, रिद सिद्ध कर्म सब होई, दुशास हो सकन कोई, एक बार जिन तुम संवारा, काल पास देता है उबारा।

आप करे किस आखिए होर करे ना कोई आखण ता को जाइए जे भूलड़ा होई जे होए भूला जाए कहिए आप करता क्यों भुले सुने देखे बाज कहिए दान अन मंगया दिवे दान दे दाता जग विधाता नानका सच सोई।

देख देख पते पंथ की जी ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास। तुम्हार पिता

सो प्रव चेतना आवै नानक नहीं करम तिचर मूल ना थुड़ी दो जिचर आप किरपाल शब्द अखोट बाबा नानका खाहे खर्च तन माल

प्रथम राग भैरव वह करही, पंच राग नी संग उचरही। प्रथम भैर भी बिलावली, पुनिया की गाव है बंगली। पुण्य असले की पई वारी, ए भैरों की पंचो नारी। पंच महकार

अष्ट पुत्र भैरव के गावह गायन पात्र, द्वितीया माल कौशक आला पह, संग रागनी पंचो था पह, गुण करी अर देव गंधारी, गंधारी से होती उचारी, तनासरी ए पंचो गाई, माल राग कौशक संग लाई, मारू मस्त अंग में वारा, प्रबल चंड कौशक ओ वारा,

कहे नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग मह आया। मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनिया। हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापै गुर चरण लागे दिन सुभागै अपना पिर जापै। गुर चरण लागे दिन सुभागी अपना पिर जापै अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर

हाउ मात पिता बनता सुत बंधप इष्ट मीत अर्पाई पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंत को ना सहाई।

zmrtvalci. Vaheguru ji o, kavyo vaj benti chaupai hamri karo haade rachya poorno e chit ki isha. Tau charan man rahe mara apna jaan krupat para hamre dusve tunga ho apahade mo vichavo sugi vise moro parvara se yuk sikseve kartara. Mo rachya nij karde kriye sab bairn ko asangar ye poorno hoye hamari asa tur pan ki rahe piyasa tumhe shaad ko yavrna te aun jo bar chaun so tum te paun. Sevak sikha mare tariya hai, chun-chun sitra mare mariya apahade mujhe variya mankar katrasan variya hujo sada hamare pachha sriyat jo kare ur achha. Raakh liyo moe rakhna are saaya sant sahaye piyare deen vandishn ke hanta tum ho parij tardas kanta. Kaal paaye brahma bhavtara kaal paaye sivji bhavtara kaal paaye karvishn prakasa sakal kaal ka ki atmasa javan kaal jogi sab kiyo bedraaye brahma jyotiyo. जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताए हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन बजायो आद अंते कै अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसी को मारी सकल प्रजाजने आप सुवारी सिवकुन को सब गुण सुख दियो शत्रुन को फल मोद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी दे कुंजर स्थूला सब पर कृपा दिशकार भूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पहचाने कटकट के पट पट की जाने जावत कर करा कर दारा प्रजा तर तब दे अपारा जमा कर कर दो कबू तुम्हें मिल दे तर सब ऊंजे ते बदन से सब धारे आपा अपनी बूझे चारे तुम सब ही तेरा इतने आलम जान वेद वेद यार आलम निरंकार निर्विकार निलंब आद नील अनाद सम्मता का मूड चार्द भेद जाको भेद पाद वेदा ता को कृपा अनुमान तमाम मूड किस भेद न जान तमाम देव को कैसा शिव निरंकार का चिंतन पे आप अपनी मुद्दा जीती वर्णत भिन्न भिन्न तो तेती

मेरी तुम करो सिख वार सिख संग करो दुष्ट जिदाय उठवा तुझ बाधा सकल मलेश करो अणघाता जया तुझ दसणी परे तिनके दुष दुख तुम मरे पुरख जीवन पपरे त्यारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ध्याई है ताके काल निकने है रचाओ ताय सा काला दुष्ट रिष्ट काला कृपा दिश तन जान हरे हो ताके ताप तन कमारे हो रहत सिद्ध कर्म सब हो दुष्ट।

सोराता किल में सकल देह को अर्था दुष्दोखिन कोशा करता श्री तुझा पै दे अल्ला पूर्ण करा ग्रंथ काला मन वंश बल पावे सोई दुग्नत से व्याप्त कोई अड़ल सुने गुंग जो जास रसना पावे सुने मूर्छित लाय चतरता भी दुख दर्द पौ निकटना तिन नर के रहे हो जो जाके एक बार चौपे गो के चौपे समन सतरा सहज पणित जय सहज पंत तीन की जय भाद्रो सुधी अष्टम रिवारा तीर सतद्रव कं सुधारा सुवैया पाएंगे जब ते तुमरे तब ते को आंख तेरे नि आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक है मत एक नाम सिमरत शास्त्र वे स्वैभव

0: इतनी सेवा प्रदान कर रही जी, कीर्तन करते आप इन्होंने माफी बख्श नहीं। आओ अगला प्रोग्राम सर्व करो जी, बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा,
1: वाहिगुरु जी की फतेह।
2: दीन दुनिया दे वाली, चवर तख्त दे मालिक, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दरबार दियां हारियां परे गुरु खालसा जी, आओ फतेह दी सांझ पाईए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ऐतवार दे शेष प्रोग्रामां दे विच आप जी नूं गुरबाणी कीर्तन निहाल कर रहे सन साडे बड़े ही सत्कारयोग भाई गुरप्रीत सिंह जी ते उन्हां दा जत्था जत्थे दा बहुत बहुत धन्नवाद। इस तों उपरांत आप जी नूं गुरमत विचारां राहीं निहाल करनगे साडे बड़े सत्कारयोग भाई लखविंदर सिंह जी। उस तों उपरांत 12:15 दे करीब जो साडे गुरु घर दे प्रोजैक्ट चल रहे ने उन्हां बारे आप जी नूं अपडेट किया जाएगा। इस तरह ही 12:30 दे करीब भाई सुनाम सिंह जी गुरदासपुर वाले, उस तों उपरांत 1:30 तों लैके 2:40 तक कथावाचक भाई अमरीक सिंह जी चमकौर साहब वाले आप संगतां दे दर्शन करनगे। एक दो जरूरी बेनतियां, साढ़े पास ज्ञानी कुलवंत सिंह जी लुधियाने वाले 9 अक्तूबर तो लैके 14 अक्तूबर तक आप संगतां दे दर्शन करनगे। इस तरह ही जो इस कमिंग हफ्ते धन धन साहब श्री गुरु रामदास साहब जी के प्रकाश दिहाड़े आ रहे ने उस संबंध में 7 तरीक नूं शाम नूं अखंड पाठ साहिब आरंभ होणगे, जिन्हां दे भोग 9 तरीक नूं शाम नूं 4 बजे पैणगे। उस तों उपरांत 5 तों 6 बजे तिकर सिमरन होवेगा। नाल ही बेनती करां जो 21 नवंबर नूं खंडे वट दी पौल दा अमृत संचार दा वाटा तैयार हो रहा है, सो आप सब ने जिस किसी ने भी अपने बच्चों नूं जां किसी ने भी अमृत दे वट दी पौल प्राप्त करनी होवे आप लाइब्रेरी विच अपना नाम लिखवा सकते हो। एक दो होर जरूरी बेनतियां ने, आप अक्सर देखते हो जां गुरु घर आउंदे हो अपनियां गड्डियां देख के पार करिया करो, क्योंकि जो असीं गड्डी कढ़दे हाँ तो पिछे बैक करदे चैक नहीं करदे पिछों गड्डी होर भी आ रही है। बहुत केस आउंदे ने जिस विच दूजे परिवार नूं सफ़र करना पैंदा है जदों किसी की गड्डी हिट हो जाती है। अपना इमानदारी नाल उत्थे जे किसी तों गड्डी इस तरह हिट हो जाती है तां अपना इनफॉर्मेशन जरूर दे के जाओ, चाहे लाइब्रेरी दे जाओ, चाहे जिहड़ी गड्डी तुसीं हिट करदे हो तां उत्थे अपना कॉन्टैक्ट नंबर छड के जाओ। नाल ही बेनती करां जो आप घरां विच्चों समान लिया के गुरु घर रखदे हो, बड़ा इतराजयोग हुंदा है जदों तुसीं घरां विच्चों चीज़ लिया के कोई भी गुटका साहिब होवे ओह बाहर लिया के आपां उत्थे बाहर रख दिंदे आ, तुसीं ठीक है। जे कोई बहुत बिरध अवस्था दे विच है तां उस नूं लाइब्रेरी विच जमा करवाओ, उसकी बेअदबी करके बाहर ना रख के जाओ। यह देखने आता है कि तुसी कोई केयर नहीं करते, वह बाहर जो कार्ड पई है उत्थे गुटका साहब वो उपर पे होंगे ने। प्लीज़ हाथ बन के बेनती है कि इस तरह की बेअदबी कोई भी ना करे, क्योंकि यह बर्दाश्त योग गल्लां नहीं है। देखते हाँ कि गुटका साहब उत्थे पे ने जिन्हों असी बाणी पढ़ते हाँ, यह हाथ बन के बेनती है। प्लीज़ नैक्सट टाइम जे किसी ने भी अपना बिरध अवस्था के गुटका साहब लैके आना है आप उन्होंने सरकार साहब लिया के लाइब्रेरी जमा करवा के जाओ। प्लीज़ सानू गांह वास्ते इस तरह मौका ना दिओ कि इस तों स्टेज तो अनाउंस करना पवे, क्योंकि यह गल्लां हर रोज़ बढ़ रही ने। नाल ही दूजी बेनती करा जो आप व्हीलचेयर तुसी बाहर देखते हो कि लॉबी दे विच पहला एक व्हीलचेयर होंदी सी, हुण उत्थे 5-6 व्हीलचेयर तुरियां फिरदियां जो कि बच्चे जां होर उन्हां नूं छेड़छाड़ करके उत्थों अपने आप नूं सट भी लवा सकदे ने। कोई भी व्हीलचेयर प्लीज़ गुरु घर ना डोनेट करो इस तरह चीज़ां। होर भी कई चीज़ां जिहड़ियां कि स्टेज तों अनाउंस करदे नूं शर्म आउंदी है, पर तुसीं आप ध्यान रखो भी इह सानूं गुरु घर शोभा नहीं दिंदे आ जो असीं इह गल्लां कर रहे हां। इन्नियां बेनतियां प्रवान करिओ। आओ हुण साडे हाँ जी एक जरूरी बेनती होर, ठीक है मानते हाँ कि आपने प्रसाद इतों गिलास के पा के जे आप घर परिवार में ले जाना चाहते हो तो उसका सत्कार सहित उसनों लैके जाओ। ये भी नोट किया जाता है कि प्रसाद गिलास में पा के जोड़ा घर के रख के असी भुल जाते हाँ जा अणगौलिया करके चले जाते हाँ। प्लीज़ ये दिनों दिन जो हालात ने साडे बिगड़ते जा रहे हैं, असी अपने आप को गुरु महाराज का भाव रख के ये गल्लां ना करिए। इन्नियां बेनतियां प्रवान करियो। ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ 12:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

लेकिन गुरु नानक साहब महाराज साहब ने प्रकाश न्याई एटी नजर मेहर की कलमा भी भुल गया जिड़ी ना की दौलत सी ओ अंदर की दौलतमंद होगी पहली नजर जिड़ी सी ओते गुण की है गुण सब कुछ करे गुणा की क्या जे गुण करने अवगुण की है गुण तो ही बन आयो है गुरु नानक साहब ने औगण कर आए तक गुण भर दिते कि ओनू इलाही बख्शिश कर दिती लेकिन बाकी सारा कुछ जिहड़ा सीगा जिदन 1478 की विसाखी 1478 की विसाखी सानू खालसा स्थान दिता गया 1478 की विसाखी इस खालसे महल की नींह रखी गई सी असी जो ओ जनेऊ वाला कौतक सी असी उन समझे नहीं असी उन्हों केवल जनेऊ ना पाउण तक सीमित रखिया जिहड़ा सिद्धांत उस अकाल पुरख दा सी ओ जिहड़ा सिद्धांत गुरु नानक साहब ने देना सी आके जनेऊ पाउण तो पहला दो काम हुंदे आ एक ते मुंडन करना पैंदा पहला दूजा गंडका नदी विचों निकले हुए पत्थर नूं मत्था टेकना पैंदा हरदयाल पंडित पत्थर नूं सालग्राम कहिंदे आ ओह सालग्राम पत्थर लिया के ते मुंडन दा समान लैके आया सी हुण याद रखियो कि सिख नूं चंगी कहना चाहिदा है बेटा कहना चाहिदा है लेकिन मुंडा ते कुड़ी लफ्ज भुल के भी नहीं सिख नूं वरतने चाहिए मुंडा शब्द ही इत्थे आया सी क्योंकि बीबी का जनेऊ पाउण नहीं हुंदा ते बीबी का मुंडन नहीं हुंदा जनेऊ केवल ते केवल बंदियां नूं पाउण दा हक सी ते मुंडन जिहड़ा हुंदा सीगा ओह लड़के का हुंदा सी ते मुंडन तों ही शब्द जिहड़ा है ओह मुंडा आया भी इहनूं मुंडिया गया हुण गुरु नानक साहब महाराज साहब ने नानका मुंडन करवाउणा सी असीं कई वारी इस भुलेखे च हुंने आ वी सानू केस जिहड़े रखणे दित्ते आ वी इहनां केसां नूं कतल नहीं करना ते गुरु गोबिंद सिंह दित्ते आ नहीं इह सिधांत अकाल पुरख दा सी ते 1478 दी विसाखी नूं गुरु नानक साहब महाराज साहब ने सानू इस तां दित्ता कि मैं अज तुहानू आप कुछ मेरे अगे आउण लगा है ते मैं अज तुहानू इह सिधांत देण लगा कि तुसी इस सिधांत ते रहना इह तुहाडे जिहने तुहानू जन्म दित्ता है उहदा सिधांत है सतगुरु साहब जी ने पंडित हरदयाल नूं जवाब दित्ता सी कि मुंडन मैं नहीं करदा दूजा जदू पंडित ने आख्या कि आ पत्थर है इस विष्णु का सकार रूप इन मत्था टेको ते गुरु नानक साहब महाराज साहब ने कहा भी यह पत्थर है ये विष्णु का सकार रूप की होया की मिलेगा जे मैं इनू मत्था टेका नाल सतगुरु साहब जी ने असी उस विचार नूं समझे नहीं जिहड़ा आख्या पंडित जी मैं जनेऊ पाउण नूं तैयार हाँ पर मेरे तुम जनेऊ पाउणा है किहड़ा पाउणा है दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत वट असी इस गल तो मुनकर नहीं हो सकते कि गुरु नानक साहब जिहड़ा प्रकाश होया है उस प्रकाश होण तक वह घर हिंदुआं दा सी इह गल वक्खरी कि उस प्रिंसीपलां नूं उहनां सिधांतां नूं गुरु नानक साहब ने रिजैक्ट करता कि यह सिद्धांत साढ़े ते लागू नहीं होने मैं इस दुनिया के आई उस अकाल पुरख के सिद्धांत देना लेकिन जिस दिन मुसलमान के घर मुंडे ने धर्मी होना सी उस दिन गुरु नानक साहब नानकियाणा साहब की धरती से आप ओदे घर गए जदों ओदे घर गए तो काजी ने सोचा कि गुरु नानक ने हिंदू धर्म नूं प्रवान नहीं किया शायद इन मुसलमान धर्म चंगा लगा है ते सतगुरु साहब ने काजी नूं पुछा है जाके कि इत्थे की हो रहा है

कि तू वार दा जवाब नहीं देना, तेरे को कृपान पाई हुई है ताकि यह समझ आवे कि वार नहीं करना। उन समझाने की कोशिश कर, पर कृपान हथियार अफरत नफरत वास्ते नहीं। गल होर नोट करो, जे असी कई बार इं अणजाणपुण च कहने कि बाबा बंदा सिंह बहादुर साहबजादा का बदला लैण वास्ते आया सी। सिख धर्म की फिलासफी अगले का बदला नहीं है, साड़ी जे फिलासफी है फरीदा बुरे का भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग ना लगी पल्ले सब कुछ पाए। लेकिन जे कोई ना समझे विचार दे नाल, फिर उस जालम नू जुलम करन तो रोकन वास्ते सानू किरपान है कि इनू हुण हथियार नाल समझाउणा पऊगा। इसे करके ही तीन वार करन तो बाद उन जवाब देना है कि यह विचार नहीं समझदा पिया, यह जुलम ते आ गया। इस जालम नू समझाउण वास्ते जिहड़ी है ना वह किरपान वरतनी पैनी, कृपा करनी पैनी। दूजा है अगले पासे जिहड़ा संतोख सूत, उधर है सिदक मसला। संतोखी बंदा जिहड़ा है वह किसी कोलों मंगदा नहीं है। सिख नू आख्या तैनू मैं वह जनेऊ देते, मैं तेरे हाथ विच कड़ा पवा चलिया। कई बार कई सज्जन कहणगे जी इस कड़े नाल ऐरन मिलता हैगा है। प्रोफेसर पूर्ण सिंह ने लिखिया कहिंदे इह गल ना क्या करो, ने क्यों कहिंदा बच्चे कहणगे ऐरन दे कैप्सूल खा लांगे। नहीं, इहदा मुढ जिहड़ा मुख है कि तेरा हथ नहीं हैगा, यह हथ गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब का। गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब का हथ जिहड़ा है ना वह किसी कोलों मंगदा नहीं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब हथ जिहड़ा है वह वंडदा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब हथ जिहड़ा है वह जुलम नहीं करता। इस वास्ते तेनू सिदकी बना के चलिया, तेनू संतोखी बना के चलिया। पर अफसोस यह आ कि अज साडे च इन्नी गिरावट आ गई है। जिन्ने पुरातन तुहानू प्रचारक मिलणगे, जिन्ने तुहानू पुरातन गुरु के कीर्तनिए मिलणगे, तुहानू इह किते नहीं मिलेगा कि वह माया की खातर गए होना कि तू माया मंगी हो। अफसोस, मैनू माफ करो, अज साडे च आ गया है कि मैं इन्नी भेटा लाँगा तो फिर कीर्तन आवांगा। सिख सौदाबाजी नहीं दे कर। भाई नंद लाल जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब के बहुत प्यारे आ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब उन्होंने टुटे सी ना, तो उन्हें आख्या ही भाई साहब मंगो तुसी की मंगदे, तो उन्होंने आख्या जे तुसी टुटे जेना तो मेरे ते एक नजर मेर दी भर के तक। भाई साहब ने अपनी बाणी च कोड किया है, साहब जी कहन लगे भी जे तू नदर मेहर दी भर के तकां तू की देगा मैनू, ते भाई साहब कहने मैं सौदा करदा वा मैं तेनू अपनी जान दे दिया। उन्हें पंक्तियां ने गुफ्तम किसान दहेम इवाज जाके निगाहे तू। मैं ये कहना गुफ्तम मीम लगी है, जे तू एक निगाह मेहर दी भर के मेरे ते तके मैं तेन जान दे दिया। लेकिन जो जवाब गुरु गोबिंद सिंह ने दिता वो दिता गुप्ता मां ओ तू सौदा नवी स्वत। भाई नंद लाल जी तुम सिखी च आए, सिखी दे विच सौदा नहीं, तेरे मेरे विचकार सौदा नहीं हो सकता। सिखी जिहड़ी है वह सिदक च कमाई जाती है, गुरु वालों बख्शिश हुंदी है। असी भी कई बार अणजाणपुण च यह कह दें कि साड़ी एक किरत है, किरत दुनियावी है। एक कीर्तियां एक ढाडी एक प्रचारक की किरत नहीं, यह बख्शिश है गुरु वालों, गुरु संगत वालों। वह भावें किणका मात्र होवे उहनू प्रवान होनी चाहिए है। लेकिन जे सिखा तू मंगण ते आ गया कि मैं तो इन्ने लैने, याद रखी तेरा कड़ा जिहड़ा है वह भेख बन जाना है।

हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयाल लाल, प्राणनाथ अनाथ सखे, दीन दर्द निवार, हे समर्थ अगम पूरन, मोहे मया तार, अंधकूप महाभयान, नानक पार उतार। सुकहु टल गुर सेवीय, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसिय गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। हुवै सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चट्टी, तुद डिठी सच्ची पातशाह, मल जन्म जन्म दी कट्टी। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाहांदै शाह, जिस पास बैठिया सोही है,

बेन पूरे गुरदेवा फिर सैतानिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। श्लोक बसंत स्वर्ग लोक है जित ते पृथ्वी नव खंडन है, बिसरंत हर गोपाल है नानक ते प्राणी उदयान भरमण है। एको अंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरप्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरप्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरप्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरप्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरप्रसाद। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की।

एक ओंकार सत गुर प्रसाद सलोक महला नौवा गुण गोविंद गायो नहीं जन्मे अकारथ कीन कहो नानक हर भज मना जेह बिद जल को मीन।

मत दिन पी जाए। पावर गए बग बैठे आए। इन्हां पंक्तियां विच बहुत वड्डा रहस है। सतगुरां ने एग्जाम्पल दिते ने कि जिवें काली बोली रात बीत गई है, किते ऐसा ना होवे कि तेरा दिन भी बीत जाए। रात तो भाव है साड़ी जवानी, जदों साडे वाल काले हुंदे ने, उस नूं सतगुरां ने रात मन के इंसान नूं जागृत किया है कि जिवें तेरी जवानी चली गई है, इवें किते ऐसा ना होवे चिट्टा दुध वर्गा दिन, भाव कि जिवें हुण वाल चिट्टे हो गए, काले हों फुन धौले आए, जिवें भावर गए बग बैठे आए। जिदा काले भावर भाव के जवानी चली गई, काले वाल जड़े हुण सफेद हो गए, भावर गए बग बैठे आए। बगले चिट्टे हुंदे ने, भावर काले हुंदे ने, ते बगलियां दी न्याई भाव के हुण बुढ़ेपा आ गया, तेरे धौले आ गए, वाल तेरे चिट्टे हो गए, किते एवें ना होवे कि जिवें जवानी तेरी निकल गई है कार विहार करदिआं, इवें तेरा किते बुढ़ेपा भी ना चला जाए। रात गई मत दिन पी जाए, किते ऐसा ना होवे कि ये समा भी तेरे हथों चला जाए। भंवर गए बग बैठे आए, काचे करवै रहे ना पानी, हंस चलिया काया कुमलानी। जिदा कच्चे घड़े विच कोई पानी रखण दा यतन करे, ओ लंबे समय तक टिकिया नहीं रह सकदा, हौली हौली सिम सिम के ओ खत्म हो जांदा है, मुक जांदा है। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उदाहरणा दे के सानू समझाउणा कीता, प्यारिया समझ अजहो समझ, कछ बिगड़ो नाहिन भज ले राम मुराद। अजे भी समा है, कुछ भी बिगड़िया नहीं। जो सुवास तेरे चले गए ने, जो सुवास तेरी जिंदगी विच्चों मुक गए ने, ओ तेरे हाथ वापस नहीं आने। जो सुवास तेरे कोल बचे ने, उन्हां नूं सफलियां करन दा यतन कर, किते ओ भी ना तेरे हथों चले जाण। सतगुरु सच्चे पातशाह जी सानू वार वार समझाउंदे ने, प्यारिया अजो समझ कछ बिगड़ो नाहन, अजे भी कुछ नहीं बिगड़िया। कहिंदे हुंदे ने ना डुल्ले बेरां दा कुछ नहीं बिगड़िया। सो जिहड़ा समा तेरे कोल है, ओह समय नूं संभाल लै। जिहड़ा निकल गया ओह वापस नहीं मिलना, ओह वापस आउणा ही नहीं। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी सानू समझाउणा करदे हन। सो काश किते सानू इन्हां पंक्तियां दी समझ लग जाए, ते असी जागृत अवस्था विच आ जाइए, जो असी लंबे समय तो गूढ़ी नींद सुते पए हाँ, सानू इत्थों जाना भुल गया है। असी समझदे हाँ असी सदीवी काल लई इत्थे ही रहना, साडा लम्मा रहण बसेरा है। नहीं प्यारिओ, हम आदमी हाँ एकदम, मोहलत मोहत ना जाना, नानक बिनवै तिसै सरेवो, जाके जी प्राणा अंधे जीवना बिचार, देख केते के दिना। ज्यादा समा तेरे कोल नहीं है। पहला आपां देखदे सां साडे बजुर्ग अक्सर ही 100 साल की उम्र भोग लिया करदे सन, हुण तां कोई 60 तो बुरला विरला ही उपर जांदा। सो साडा खाण पान उदां दा हो गया, साडे काम काज साडे हथों चले गए। मेहनती हुंदा सी बंदा, मशीनी युग आउण करके मेहनतां चलियां गईयां, हथीं काम काज करने छड्ड दित्ते, साडे शरीर थल्ले हो गए।
ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਆ ਕਿਰਤ ਕਰ। ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ। ਤਿੰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਏ। ਜੋਤ ਓਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹੀ ਜੋਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹੀ ਜੋਤ ਹੁਣ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਆਖਦੇ। ਸੋ ਆਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਰ ਲਵਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਜਾਏ ਸੁੱਤੇ ਜੀ ਰਾਣ, ਪੰਜ ਸੱਤ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਖੇਮਾ ਦੇ ਜਾਚ ਹੋਵਾਂਗੇ।